जिसते ना भी पास मत आओ कि दूर जाना मुश्किल हो उच्चरक लैंग्वेज ने पा आई एम द रसन बेरी वे हित का उपन खान दम हैंगी मवेन वेन सत्य दिन पाहे मा मंदारम रे हाथ टा नित अहन्ना